नट नारायण राग दे अधीन गुरु ग्रंथ साहिब विच एक होर राग स्वरूप मिलता है, वो है नट। असल विच नट नारायण राग नट दी ही एक प्रकार है, पर दोनों राग भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। जिथे गुरुदेव ने नट नारायण की वरतों की है, उत्थे स्पष्ट तौर पर नट नारायण महला चौथा पांचवा आदि लिखा है। नट नारायण का स्वभाव है काला, ये काल मिटदी है ना दे अमृत जल नाल। नाम नाल मन थिर हो जाएगा, नटखट नहीं रहेगा। नट नारायण दी थां नर नारायण ले लवेगा। खिन खिन नर नारायण गावे है, मुख बोले है नर नर हरे। मन दी स्थिरता ले नाम अमृत जल है, बाणी दे सार विच जिस नाल निस्तारा होना है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। इस राग दे आरोह विच सत्ते सुर अते अवरोह विच धैवत अते गंधार वकर ढंग नाल लगदे हन। दोनों मध्यम लगदे हन। इस दे गौण दा समय राग दा दूसरा पहर है। राग नट नारायण विच पहला शब्द मेरे मन सेब सफल हर काल, ले गुरपग रेन रवाल। गुरु रामदास जी पातशाह जी दी रचना। इस शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई परमजोत सिंह जी। दूजा शब्द सरवण करो भाई हरिंदर सिंह हरचरण सिंह जी फक्कर। गुरु अर्जन देव जी दी रचना है। उलाह नू मैं काहू न दियो। पहला शब्द मेरे मन सेव सफल हर काल।

परमेश्वर पुत्र है ते सब नरक कुंड में पर है। मोको दास तबन का जानो वाह वाह।

सो गिरही सुदास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणे। आओ थोड़ा अपनी असलियत वाल नजर मारिए। मैं एक सवाल उठाना हां, असी सारे जितने इत्थे क्रिस्ती बैठे हां, कि साड़ी जिंदगी दी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ए है कि असी अपने आपे दी खोज करनी है, इसका अपने अंदरों उत्तर लभो, अपने अंदर रिफ्लैक्ट करो, अपने अंदर ध्यान नाल इस गल का जवाब लभो कि तुसी जिंदगी दे विच, असी जिंदगी दे विच कि यही मुख काम जो है उसनू अपने मुख रखिया होया है अपने आप नू पहचानन दा, जां ए कोई इशू ही नहीं है साड़ी लाइफ का, जां ए कोई साड़े वास्ते खास कोई समस्या नहीं है, जां ए कोई साड़े वास्ते बहुत अहम चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अपने अपने अंदरों जवाब लभण की साथ संगत कोशिश करो। गुरु बाबा जी की हजूरी दे विच असीं बैठे हैं ईमानदारी दे नाल कि असीं अपने आप की खोज करन दे वास्ते भी कोई टाइम निकालदे हां या नहीं निकालदे, जां कुछ साडा ध्यान है इस पासे या नहीं, साडी सोच है इस पासे या नहीं है, कि असी अपने आपे की खोज करन दे विच लगे हुए हैं जां दिनों दिन अपने आपे नूं गुआई ही जा रहे हैं, खोई ही जा रहे हैं। गुरु बाबा जी ने स्पष्ट आख दिता है कि सो गिरही ओही ग्रिस्ती असल ग्रिस्ती है, ओही सन्यासी असल उदासी है जिसकी जिंदगी का आदेश एक ही है कि उसने अपने आप नूं लभना है कि मैं कौन हां, मेरी असलियत की है, अपने मूल नूं पछानना है। महाराज जी ने साडे ते सवाल भी किया है, कहिंदे हन सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, कहिंदे भी तू कौन है कित्थों आया है, तैनू इस चीज की खबर है। बस जिस दिन तू ए लभ लेगा कि तू कौन है, जिस दिन तू ए पहचान जाएगा कि तू कौन है, उस दिन कहिंदे हन अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया, अपने आपे नू पछानना ही नाम दी प्राप्ति है। कोई पूछे नाम दी प्राप्ति।

की चीज है नाम की है, अपने आपे नू पहचानना ही नाम दी प्राप्ति है। और अपने आपे नू पहचानन तो बाद के मैं आ हां, फिर मैं अपने आप नू असल तौर पे प्यार करांगा कि मैं आ हां। जब किसी नू ये पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हां, उस दिन उसनू अपनी असली हस्ती का पता लगेगा जो कितनी महान है, वो प्यार करन दे योग है। और फिर उसनू ये भी नजर आएगा कि ये जो दूसरे हन ये कौन हन, मेरे पे इना अंतर की है। उथे जाके डुअलिटी, द्वेष, मेर ते सब खत्म होएगी जो अपने आपे की पहचान हो जाएगी। सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणिया। सो ग्रिस्तिया नू इस भुलेखे च, इस टपले च, इस गलती गलत फहमी च नहीं रहना चाहिए कि असी इना दुनियावी रुझेव्या दे विच इतने रुझ जाइए, इतने सुस्त हो जाइए, इतने आरामदेह हो जाइए, इतने लेजी हो जाइए कि एक सन्यासी साधु वर्गा जीवन गृहस्थी का भी होना चाहिए है। ते ओ ना हो आपनू नहीं बुझिया, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह गृहस्थी है, चाहे कोई काजी है, चाहे कोई मुल्ला है, चाहे कोई जंगम है, जोगी है, पगवे पेघवाला है, कोई भी चाहे है। जितनी देर तक अपने आप की पहचान नहीं कर लेंदा, अकाल पुरख की दरगाह दे विच कहिंदे ओ बख्शिया नहीं जाएगा। कहिंदे हन काजी मुल्ला होवे शेख, कोई काजी होवे चाहे कोई मुल्ला होवे, साडे वल लगा लो कोई भाई होवे, ग्रंथी होवे, कीर्तनिया होवे, कोई शेख होवे, जोगी जंगम पगवे पेख, कोई जोगी होवे, कोई जैन मत दा होवे, कोई पगवे पेख वाला होवे, कहंदे हन को गिरही कर्मा की संद। चाहे कोई गृहस्थी होवे, गृही होवे, जिहड़ा सारे कर्म कुर्म ते निभांदा होवे, कदे पाठ करा लिया, कदे लंगर करा लिया, कदे तीर्थां ते जाए, दर्शन दीदारे कर आए, अते बाकी दुनियावी जिम्मेवारियां भी सारियां निभांदा होवे, लोकाचारी भी पूरी करदा होवे, को गिरही कर्मा की संद, सारे कर्मां नू पूरी तरह मिलांदा होवे, करदा होवे, पर कहंदे हन

0: इस लाइन च यह कहा है बिना अपने आप बुझण तो सारे ही परमात्मा की दरगाह दे विच कहिंदे कतार दे विच बन के खड़े किए जाणगे गुनाहगारां दा किसे नूं भी कोई मुआफी नहीं है किसे नूं भी कोई मुआफी नहीं सो ग्रिस्तियां वास्ते ये परम भुलेखा दूर करने वास्ते दास ने अज का यह कीर्तन चुनिया है क्योंकि ग्रिस्तियां की जो दशा अज सारे संसार च खास करके असी तो अपनी ही गल करनी है ना जो नजर आती है वो ये नहीं नजर आती कि ग्रिस्तियां का जीवन फोकस्ड इस गल देते है कि उन्होंने स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है इनलाइटन्ड होना है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है अपने आपे नूं बुझना है यह साडा मेन फोकस नहीं है लाइफ का ते ना ही असी अगां बच्चों नूं पास ऑन करते हैं जे ये साडा अपना जीवन का मुख कर्म नहीं है तो फिर बच्चों का किवें बनेगा उन्हां दा भी नहीं बन सकता फिर बाद दे विच सानूं पछतावा हुंदा है कि बच्चे दूर चल गए हैं बच्चे दूर जा रहे हैं असी खुद ही दूर चले गए हैं सानू खुद ही नहीं पता कि गृहस्थी होके गृहस्थी का जिहड़ा मुख निशाना जीवन का वह की है महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच ए देख के समझ के कि गृहस्थी किथे भुल जांदे हन गृहस्थी किथे भटक जांदा है गृहस्थी किथे खो जांदा है उसका बाणी च जिक्र किया है सानू सुनना चाहिदा है और सुनना साडे लई बहुत लाजमी है तां कि असी सुनन तो बाद देख सकीए कि कितने यही हालत ते नहीं साड़ी फिर सानू पता चल जाएगा कि असी गुरु नानक दे ही ग्रिस्ती हाँ जां असी कुछ हो रही हाँ गुरु महाराज ने कैटेगराइज किया है बाणी दे विच कि ग्रिस्ती जो है नंबर एक वो इंद्रियां दे रसां दे विच खो जांदा है सारी जिंदगी वो अपनिया इन सेंसुअल प्लेजर्स दे ही एंटरटेन करन दे विच गुआ दिंदा है शरीरक सुखां नूं ही पालदा रहिंदा है शरीरक सुखां नूं ही वधांदा रहिंदा है अते शरीरक सुखां ते ही उसकी जिंदगी सीमित रह जाती है एक कुताही ग्रिस्ती यह करता है दूसरी कुताही ग्रिस्ती यह करता है कि उस दे जीवन च सिर्फ धंधा ही धंधा धंधा ही धंधा धंधा ही धंधा रह जाता है और उस दे जीवन दे विच कोई प्रायोरिटी नहीं होती कोई प्रायोरिटी नहीं होती धंधे तो अलावा उहदा कोई जिंदगी का होर खास निशाना नहीं है अपने लिए भी और अपने बच्चों लिए भी ग्रिस्ती दो चीजों के विच खो जाता है नंबर एक शरीरक रसां दे विच इंद्रियां दे रसां दे विच दूसरा ग्रिस्ती खो जाता है अपने धंधे की दुनिया के विच आओ महाराज जी की बाणी के विचों जो हुण मैं कह रहा हाँ उस उत्ते मोहर लगाइए कि गुरु का जी का यह निर्णय है कहते हैं
1: यू आर लिसनिंग टू सीकनेट रेडियो broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

हमारी जेबा एक रूप हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर चले आने हर तुम बड़ अगम अथाह।

वटी हूँ बड़ा अबार तेरा मर्दबा, वटी हूँ बड़ा अबार तेरा मर्दबा। निर्मल निर्मल सूजा, निर्मल निर्मल सूजा, सुचो सूजा सुचो सूजा, सुचो सूजा सुचो सूजा, अंत न अंता सदा बेअंता। कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते रोथान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते रोथान, तेरो थानं।

हर जपे हर मंदिर साजिया हर मंदिर साजिया संत भक्त गुण गावे हर मंदिर साजिया निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते हमें अपराधी तुम बख्शाते जिस पापी को

तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया, एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती थी, नीचे होते चले गए।

नदरी धर्म लिंगाई पार कोलू चरखा चक्की चक थद वरोले बोतन लटू मझनिया अंगा पंखी भौजल सुबह चढ़ पवाइए जंत नान भौज।

गरोब है, दारू भी सुमाए, कृपा करे जे अपनी ठाकुर का सो तुम कहे सुनो जनो।

खोजत खोजत भई बैरागन। प्रभ दर्शन को हो फिरो तसाई, दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साध संग मेरी जलन। माई रजनी ने, माई रंगकड़ी ने किया फरीदा, किसे मुर्शद दी सेवा कर, आखो श्री वाहेगुरु प्राप्ति मुर्शद तू हो गई। कोई गुरु तारण कर, बाबा जी वचन कर दे सन, कितना जप तप क्यों ना कर लेवे इंसान, जितने तक गुरु वाला नहीं बनता वो जप तप सफल ही नहीं होता। कितना कर जी पातशाह ने 21 वेरी तीर्थ यात्रा की थी, गंगा मैया जी स्नान की थी, हर साल जाते सन, और भी कर्म कांड दान पर करते सन, पर बैरागी ने कह दिता सी, ओ बाबा तो ता मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिता है, क्योंकि तू निगुरा है आंखों श्री वाहेगुरु, मैं तेरे हथों पानी पी बैठा निगुरा। गुरु जी गुरु मिल गया भाई सब कुछ, असं गुरु वाले तां बनते हाँ जे अमृत छक लीए तो आखो श्री वाहेगुरु, फिर अस गुरु वाले बन जाते। गुरु का बड़ा मान है, जेदे गल च भाई पटा पाया वे कुत्ते दे ओनू कोई फिक्र नहीं, जे पटा ना हो फिक्र ही, जेड़ा गुरु वाला बन गया वो अपने मालिक वाला खसम वाला बन गया। खसम का बड़ा मान, निगोरे का भी कोई चीज नहीं, लावारस कुत्तियां दे पैर मार मुकाया जाता है, उन्हों का जीवन किसी काम है। गुरु की वड्डी शक्ति, गुरु का वड्डा आसरा, गुरु का बड़ा मान है। बुले शाह ने लिखिया, ना मैं जब तक पूजा की, ना मैं गंगा नहाया, ना मैं पंज निमाजा पढ़िया, ना मैं हज कराया, बुले शाह मैं मुर्शद मिलया उस एवें चा बख्शाया, एवें जिन उत्ते मेहर करते हुए भाई मेरा स्थान। माई रंगी ने कहा फरीद, कोई गुरु तारण कर, चला जा आज मेर, ख्वाजा पीर पूरा गुरु है मुर्शद है, ओनू जाके तारण कर। ख्वाजा पीर दे दर्शन कीते, हे मालिक दे प्यारे हो करो कृपा मेरे उत्ते, आवाज आई फरीद सेवा तू मेवा आखो श्री वाह। फरीद रोज अमृत वेले पानी गर्म करके अपने पीर नु इनान करांदा है ख्वाजा पीर। कितना समा हो गया, 12 साल आ जा, इरला दिन है, पीर ने सोचिया भी कसवटी लगाइए, इम्तिहान लगी फरीद दा पूरा, अंदरों सेवा करदा के बाहरों करदा, इम्तिहान लिया। अज बारिश हो रही, जिथों अग बाल के पानी गर्म करदा सी अग बुझ गई, कित्थों लियावा अग, उच्ची थां ते चढ़ गया। दास कई वारी अजमेर जे है सके मुसलमाना का दूजा मक्का है अजमेर शरीफ, बड़ा सुंदर बनया हो, जगह भी तकी जिथे फरीद ने उची चढ़ के पहाड़ी के उत्ते अग भी पाल की थी। दूर वेखे अग का लिशारा पे तुरन लगा, ख्याल आया मना बारिश बड़ी जोर दी, किस तरह पहुंचा तो फरीद ने उसे लिए श्लोक उचारिया।